0: বন্দনা ভক্তিমূলক গীতৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানত কান্তাদেৱীৰ কণ্ঠত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত বৰগীত, নলিনী মহন্ত আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠত নাম, অৰ্চনা মহন্ত আৰু লগৰীয়াসকলৰ কণ্ঠত টুকাৰী গীত, খগেন মহন্ত আৰু সহ শিল্পীসকলৰ কণ্ঠত ভক্তিমূলক গীত, গীতিকা চেটাৰ্জীৰ কণ্ঠত ভজন শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6:00 হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: मधुबन अनुष्ठान यार शुनबू सिलसिला सबित लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन कंठर इति गीत गीतिकार जावेद आख्तर संगीत शिव हरिर।
0: तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों

0: के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकर

आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा सम्पन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के

रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया।

0: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने सीजेपे के सभी तीन मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजेपी ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সমূহ শ্ৰোতালৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মুকলি কৰিছো আমাৰ আজিৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছত ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত। আমাৰ এতিয়াৰ অধিৱেশনত ষ্টুডিঅ'ত মই বনশ্ৰী হাজৰিকা, মোৰ সৈতে ডিউটি ৰুমত নাছিফা আহমেদ, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত প্ৰসেনজিৎ দেৱ, আতিকুৰ ৰহমান, আনোৱাৰ আলী আৰু অমলেশ কলিতা, ট্ৰান্সমিটাৰত মিথিলেশ কুমাৰ ৰঞ্জন, তিলক চন্দ্ৰ দাস, আছিফ আহমেদ। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠানৰ ঘোষণা এতিয়াই শুনিবলৈ পাব।
1: খন্তেক পাছতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
3: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
4: महात्मा गांधी का कहना है,
5: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
6: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
7: कोई बोले राम राम।
6: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ

साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के
साउथ चित्तूर में

स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी
पहुंच रहा है।

बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में
करीब

40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को
और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত, 12:05 ইংৰাজীত আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता

0: लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today."
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: The Prime Minister said that a special Shaurya Vijay Yatra has been organized this year, which began on the 14th of July from the National War Memorial in Delhi. This motorcycle rally will reach the Kargil War Memorial in Dras. Its message is one right, one nation, one salute. Mr. Modi said that this journey reminds everyone that the sacrifice made for the nation can never be forgotten. Mr. Modi said, India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said, "Every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday." He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, "A special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो

आज के इस प्रसारण में मैं सीमा रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और साथ ही साथ हमारी ओर से आप सभी सैनिक भाइयों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि कारगिल विजय दिवस पर।

सैनिक भाइयों, आज के संगीत में सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद इस प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। बारह बजकर 30 मिनट पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर सब रंग कार्यक्रम और दिन के 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे, यानी कि दिन के 1:10 पर आज का विशेष कार्यक्रम को लेकर, कारगिल विजय दिवस पर।

दिन के 1:40 पर शीर्ष संगीत कार्यक्रम और दिन के 2:00 और 2:15 पर अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे यानी कि दिन के 2:30 पर अंतिम कार्यक्रम को लेकर गीत अपना धुन पर आई। गीत अपना धुन पर आई के साथ ही आज का प्रसारण समाप्त होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की छोटी

फिल्म संगीत कार्यक्रम का यह था पहला गीत अरिजीत सिंह और विशाल की आवाजों में। फिल्म का नाम था फाइटर। अगला गीत आइए सुनते हैं बड़े मियां छोटे मियां फिल्म से विशाल और नेहा की आवाजों में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से। आवाज है अखिल श्रीवास्तव की।

अखिल, सचदेव और मंशिल की आवाजों में अभी आपने सुना इस गीत को। फिल्म का नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। फिल्म का नाम है सोल्जर। इस फिल्म को संगीत से सजाया है अन्नू मलिक ने। गीतकार है समीर। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की। तो आइए सुनते हैं आज का गीत। फिल्म का नाम है सोल्जर।

इसी गीत के साथ आज का गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम है सबरंग, पर उस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल के कार्यक्रमों पर।

कल सोमवार है। हमेशा की तरह हमारा कार्यक्रम आरंभ होता है दिन के 12:10 पर। पहला कार्यक्रम सुन सकेंगे 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना और दिन के 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे, यानी कि दिन की 1:10 पर गीतमाला कार्यक्रम को लेकर, दिन की 1:40 पर वतन के तराने कार्यक्रम, दिन के 2:00 और 2:15 पर अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे दिन के 2:30 पर चयनिका कार्यक्रम को लेकर। चयनिका कार्यक्रम के साथ ही कल का प्रसारण समाप्त होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

सैनिक भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दिल है कि मानता नहीं फिल्म से सुनते हैं अगला गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: इसी गीत के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। 1:05 होने का है। थोड़ी देर में सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi

सैनिक भाइयों, अब से लेकर 1:40 तक हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुना जा सकेगा मीडियम वेव 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है आज का विशेष कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस पर। सैनिक भाइयों, आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। आज से ठीक 27 साल पहले, साल 1999 में लद्दाख की उन 18

हजार फीट ऊंची बर्फ यूली और दुर्गम चोटियों पर हमारे जावाज ने भारत के तिरंगे को पूरी शान से फहराया था। कारगिल की वो जंग से पत्थर और पहाड़ों की लड़ाई नहीं थी, वो हमारे सैनिक भाइयों के अदम्य साहस और त्याग की गाथा थी। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम सब मिलकर देश के उन अमर सैनिक भाइयों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारे कल की शांति के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आइए शुरुआत करते हैं इस रूहानी गीत के साथ स्वदेश फिल्म से ए आर रहमान की आवाज़ में।

जरा सोचिए, -10-15 डिग्री तापमान, चारों तरफ बर्फ की चादर और नीचे से ऊपर की तरफ उठती दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए हमारे सैनिक भाई। जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर, या जब कोई सैनिक भाई अपनी माँ को चिट्ठी में लिखता था माँ या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लिपट कर आऊंगा, तो उन शब्दों में भारत माता के प्रति वो प्रेम था जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। सीमा पर तैनात हमारे जाबाज सैनिक भाइयों को हमारा शत शत नमन। सुनिए ये अमर गीत रोजा फिल्म से, आवाज है SV बाला सुब्रमण्यम की।

त्याग सिर्फ सरहद पर नहीं होता, एक जंग हमारे उन सैनिक भाइयों के घरों में भी लड़ी जाती है जहां एक माँ अपने बेटे का रास्ता देखती है, एक पत्नी उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है और एक छोटा बच्चा अपने पिता की वर्दी को बड़े गर्व से छूता है। जब तिरंगे में लिपटा हुआ कोई सैनिक भाई घर लौटता है तो माँ की आंखें आंसू से भले ही भरे हों पर सीना गर्व से चौड़ा होता है। उन माताओं के इस महान त्याग को हमारी कोटि कोटि प्रणाम। बॉर्डर फिल्म से सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में इस गीत को।

26 जुलाई 1999 को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता का ऐलान किया तो तोलोलंग की टाइगर हिल और जैसी अदम्य चोटियों पर तिरंगा लहरा उठा। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार जैसे अनगिनत सैनिक भाइयों के बलिदान ने आप सभी को और हमें यह सुकून भरा दिन दिया है। हमारे सैनिक भाइयों का यह त्याग आप सभी को हमेशा याद दिलाएगी कि ये आजादी और ये सुकून हमें उनके बलिदान से मिला है। अगला गीत आइए सुनते हैं कर्मा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

आज जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो याद रखिएगा कि सरहद पर हमारे सैनिक भाई अपनी नींद और सुख त्याग कर जाग रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब अपने सैनिक भाइयों के सपनों का सशक्त और एकजुट भारत बनाएं। आइए अपने दिल में उनके प्रति सम्मान और देशभक्ति की इस लौ को हमेशा जलता रखें। अगला गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में।

सैनिक भाइयों, कारगिल के उन अमर सैनिक भाइयों के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। हम अपने सैनिक भाइयों के ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं थी आपकी प्रस्तुतकर्ता सीमा राउत। अपने देश के जाबाज सैनिक भाइयों पर सदा गर्व कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी गीत के साथ आज का विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत कार्यक्रम शीर्षक गीत।

अभी आपने सुना इस गीत को, आवाजें थी अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। अगला गीत आइए सुनते हैं, ताल फिल्म से आवाजें हैं अलका याग्निक और साथियों की।

0: इसी गीत के साथ आज का शीर्ष संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अंग्रेजी और 2:15 पर हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
2: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being vocal for local.
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
2: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said the unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at this cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Mr. Rajnath Singh said the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers. More from our correspondent.
3: Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक

0: विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खटसे ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। समाचारों के बाद एक बार फिर आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत है।

अब प्रस्तुत है इस प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। अभिलाषा फिल्म से आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में अभी आपने सुना इस प्यारे से गीत को। फिल्म का नाम था सीआईडी। अगला गीत आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ आज का गीत अपना धुनपराई कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। 3 बजे से रिले किया जाएगा FM रेनबो का कार्यक्रम। आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मैं सीमा लेती हूँ इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम इस प्रोग्राम में रोज रोज नए नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। भारतीय आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जिक्र किया जाता है। जी हाँ, दिनचर्या अर्थात दैनिक जीवन की स्वस्थ आदतें हैं, खान पान है, और ऋतुचर्या यानी कि मौसम के अनुसार अपने जीवन शैली और खान पान में आवश्यक परिवर्तन। साथियों, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को संतुलित रखे तो वो न केवल कई बीमारियों से बच सकता है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, मानते हैं, है ना। तो आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए और आपके द्वारा सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी को। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर हैं और आपको आयुर्वेद के विषय में, खान पान के विषय में, दिनचर्या के विषय में, ऋतुचर्या के विषय में पिछले 30 वर्षों का एक लंबा और गहरा अनुभव है। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: तो साथियों, जो आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। दिनचर्या, ऋतुचर्या, दैनिक और मौसमी जीवन शैली, इस विषय पर आप अभी इसी वक्त हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट, हमारे वैद्य जी इंतजार कर रहे हैं। और तब तक आपकी ओर से कुछ सवाल और मेरे मन में भी कुछ उत्सुकता है, वो भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं और आपके साथ कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं। तो डॉक्टर, ये जो ऋतुचर्या और दिनचर्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका कितना महत्व है आयुर्वेद में?
3: जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिनचर्या और ऋतुचर्या हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए, आपकी रीजनल और सीजनल वेरिएशन के हिसाब से खान पान और रहन सहन इम्पॉर्टेंट होता है हमारा
2: जी।
3: अब हम पहाड़ में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, तो हम समुद्र की जीवन जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जब समुद्र के किनारे रहते हैं तो समुद्र वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, पहाड़ पे रहते हैं तो पहाड़ वाली जिंदगी जीनी पड़ती है।
2: अलग अलग टाइप की,
3: अलग अलग है। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ का भी होता है। तो इसलिए दिनचर्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम रात को कब सोते हैं, कब उठते हैं और क्या क्या करते हैं। आजकल के जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त रूप से आ चुकी है, तो हमारा ना सोने का टाइम है, ना हमारा जागने का टाइम है, ना हमारा खाने का टाइम है। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसके बिना आप जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे बच नहीं सकते।
2: तो हम ये कह सकते हैं कि भागम भाग की जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी ज्यादा हो गई है।
3: बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, और उसी में हमको मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको हमें वायर्ड भी नहीं कर सकते
2: जी।
3: तो इसलिए
2: वो एक प्रकार से हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में और लाइफस्टाइल में ये शामिल हो गया है।
3: बिल्कुल।
2: तो तकनीकी का इस्तेमाल करना भी चाहिए, लेकिन संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी देखिए, इसी तकनीकी के जरिए ही हमारे पास कुछ फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं
3: जी।
2: हेलो
4: जी, नमस्कारम।
2: नमस्कारम।
4: सबसे पहले तो हमारे भारत के विद्वान चिकित्सक प्रजापति जी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद सर।
4: और हमारे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या का, तो मेरा ये पूछना है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए, कौन कौन सा लेने चाहिए,
2: वैसे
4: विस्तार से बताएं। धन्यवाद
2: जी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये नहीं बताया।
4: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
2: जी।
3: धन्यवाद गौतम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि

में अग्नि हमारी कमजोर होती है, तो खान पान में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है तो हम लोग ठंडा पानी, ठंडी बर्फ, कुल्फी और ये सब चीजें खाते रहते हैं, जबकि खाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि खाना जो भी खाना है हमको गरम गरम खाना है, फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। और ये सब चीजें नहीं होने से आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस समय ध्यान रखें, लू लपट अगर लगने वाली सिचुएशन है तो उससे अपने आप को प्रिवेंटिव एक्शन ले, क्योंकि हमने देखा है बचपन में कि हमारे दादाजी भी लू लपट में काम करते थे, जाते थे, लेकिन वो अपने आप को लपेटते थे, कपड़ों से ढक के रखते थे, पानी की बोतल रखते थे, पानी की बोतल उस समय होती थी नहीं थी, तो लोग अपना सत्तू रखते थे और सत्तू घोल घोल के पीते रहते थे वो पानी में। तो ये जो कुछ हमारी रेजिम डाइट बताई गई है उस समय के हिसाब से वो बहुत अच्छी है। एक पुदीना, पुदीना का अर्क, पुदीना सत्त, पुदीना हरा, पुदीन हरे के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में आम का पन्ना बहुत पॉपुलर है और अब हम लोगों को नहीं मिलता है, अब हम लोगों को रेडीमेड कंडीशन में पीना पड़ता है। तो वो सब चीजें जो है हमारे लिए उस समय कही गई थी और उनको आज हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये देखेंगे आपकी जितनी भी ग्रीष्म ऋतु की चीजें हैं तो उसमें हमें खाने पे बहुत ध्यान रखना है। सुबह उठ के जनरली क्या करते हैं लोग, कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठ के अपने को फ्रेश होना है, आराम से बैठना है, थोड़ा पानी पीना है और पानी गुनगुना पिए सुबह, जिससे पेट साफ

0: खाने का जब भी रखें आप तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, जितनी भूख है डकार मार के पूरा पानी पी लेना खाना, ये थोड़ा कंट्राइंडिकेशन होता है इसके लिए, तो थोड़ा सा कम खाना खाएं और थोड़ा पानी का जो पीने का है शेड्यूल, जैसे खाना खा के तुरंत हम लोग पानी पीते हैं डेढ़ डेढ़ दो दो गिलास, वो नहीं होना चाहिए हमको, थोड़ा पानी पीना है अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद फिर पानी पीना है, तो वो हमको मेंटेन करके रखना है। तो हमें नहीं लगता है कि गर्मी में कोई प्रॉब्लम होती है, गर्मी ऋतु हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं गर्मी की छुट्टियों में जाके, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु सबसे अच्छी ऋतु वैसे मानी जाती है रहन सहन के लिए, लेकिन खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
1: प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ पर दो तीन बातें बताई और वो भी गर्मी ऋतु को लेकर के, खान पान को लेकर के, तो मैं गौर कर रहा था कि आपने कहा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और सत्तू का, जो भी पेय पदार्थ है उनका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया तो आपने ये भी बताया कि आज तकनीकी का युग है और इसमें कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आजकल तो हर गांव घर शहर हर किसी के पास रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि लोग कहीं गर्मी से मतलब तपती धूप से वापस आ करके तुरंत ही रेफ्रिजरेटर खोल करके ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं।
0: नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने भी बचपन में किया है ऐसा,
1: उससे क्या नुकसान होता है?
0: लेकिन तुरंत क्या होता है, जो हम खाए पिए हैं वो और अपच में चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के ऋतु में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और कभी भी बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए वहां हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। घड़े का पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घड़े का पानी का एक टेम्परेचर होता है, वो उससे ज्यादा ठंडा नहीं होगा। हम लोग तो गांव में कुएं के पानी में पीते थे, कुएं के पानी भी ठंडे होते थे, तो वहां प्रॉब्लम, नेचुरल वाटर जहां आप पियेंगे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा है, फ्रिज से निकाल के तुरंत पानी या कोई भी चीज तुरंत नहीं खानी चाहिए, थोड़ा देर उसको रखना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर तक थोड़ा ले लिया के, जो उसका माइनस डिग्री का टेम्परेचर, उसको थोड़ा ऊपर लाके फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: जी प्रोफेसर साहब, अभी ये तो हुई ठंडे चीज की बात है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हम इंडियंस, हम भारतीयों के दिनचर्या में और लगभग सबके, चाय का भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्म चाय, गर्मी में भी गर्म चाय जरूर पीते हैं, ये लाभदायक है या नुकसानदायक है?
0: नहीं, अब ये चीजें लाभदायक तो नहीं होती है, लेकिन हम लोगों की आदत सी पड़ चुकी है और जब तक चाय न मिले तब तक आंख नहीं खुलती है। ऐसी कंडीशन भी हो चुकी है
1: जी,
0: क्यों आदतें जो पड़ जाती हैं वो आदतें साध्य कंडीशन में चली जाती हैं, तो उसका ये है कि लिमिटेड यूज होना चाहिए
1: जी।
0: हम भी पहले ऐसे करते थे, 12-12, 13-13 चाय पी जाते थे, अब नहीं पीते हैं क्योंकि अब पता चल गया धीरे धीरे तो छूट गई।
1: गर्मियों के मौसम में कुछ कम कर देने चाहिए,
0: कम करके रखनी चाहिए, क्वांटिटी घटा लेनी चाहिए और बार बार चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय मंदाग्नि का एक कारण होती है
1: जी,
0: डाइजेशन को घटा देती है चाय, तो उसलिए चाय की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। आदत छूट सकती हो तो छोड़ दें, उसकी जगह पे अपने जो सिंपल पेय पदार्थ हैं वो पिए, अपना गर्म पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दें, थोड़ा जीरा डाल दें, थोड़ा अजवाइन डाल दें, थोड़ा दालचीनी डाल दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
1: जी। जी,
0: ग्रीन टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको निकालने के काम होती है, तो उबाल के अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के चाय पीने की जगह अगर हम सिंपल ग्रीन टी का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो गर्म पानी का प्रयोग करें
1: जी,
0: और चाय की आदत छोड़ें। अब हम लोग, पहले तो क्या था, ब्रिटिश ने हमारे लगा दिया है उसको और हम लोग की आदतें खराब कर दी है सारी जी।
1: प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार जी, वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने एक और बात बताई, आम के पन्ने की बात की
0: जी।
1: तो यहाँ पर वैसे जो शहर है वहां पर चूल्हे की कमी तो होती है, मतलब चूल्हे यानी कि लकड़ी की चूल्हे की बात कर रहा हूं मैं, तो आम का पन्ना किस प्रकार बनाना चाहिए, लकड़ी के चूल्हे में बनाया हुआ ठीक होता है या फिर बॉयल किया हुआ?
0: नहीं, पहले ऐसा था कि पहले ये हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग कंडे में लकड़ी के आग पे उसको भून लिया करते थे। अब तो वो सुविधा नहीं है, सभी के घर में माइक्रोवेव है, लोग भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में उबाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट इतना है कि उसका जो खट्टापन है, उसका जो गुरु आहार है, उसको हमें लघु में कन्वर्ट करना है, तो जब हम उबालते हैं और उसको करते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो किसी भी तरीके से उबाल के या भून के, ये कोई जरूरी नहीं कि लकड़ी पर, क्योंकि अब वो नहीं हो सकता, जो कंसेप्ट बदल चुके।

0: है उसको नहीं हम चेन ला सकते हैं,
1: मतलब जैसे सुविधा हो वैसे कर लेना,
0: हाँ वैसा करना। लेकिन आज भी देखिए आप भी झारखंड से हैं, उधर से हम लोगों के यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता है राजस्थान में
1: जी,
0: अपने तरफ बनता है बैगन का भरता और लिट्टी बाटी चोखा बनता है। तो वो लिट्टी बाटी चोखा माइक्रोवेव में जो बनेगा उसका वो टेस्ट नहीं आता है, जो गोबर की कंडों पे या लकड़ी के कोयलों पे जो बनता है उसका जो टेस्ट आता है वो अलग होता है,
1: यानी कि नेचुरल
0: नेचुरल तो नेचुरल ही है।
1: जी जी, तो हमारे पास वैसे अब और भी क्वेश्चंस मन में आते हैं, आते रहेंगे, उठते रहेंगे और हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल पूछूं, उससे पहले अपने जो कुछ श्रोता है वो लगातार हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज रहे हैं। हमारे पास ये जो मैसेज आया हुआ ये है, ये कहते हैं कि आई एम सागर, यानी ये सागर हैं और इनकी उम्र है 26 साल की। ये हैं विजयपुरा कर्नाटका से, कहते हैं कि आई हैव टू क्वेश्चंस इन टूडेज बिजी वर्ल्ड दैट व्हाट लाइफस्टाइल वी कैन अडॉप्ट आफ्टर फ्रॉम हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज।
0: थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। नो डाउट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन टूडेज लाइफ वी जनरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा खान पान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना खाएं उतना हम पचाएं, दिस इज द वन कॉन्सेप्ट कि जितना हम खाएं उतना इजीली पच जाए। और उसके लिए करना क्या है, आपको खाने की क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, आपको अपनी नींद के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे आजकल 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, तो इसलिए विटामिन ए ई डी के की कमी आ गई है सभी के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। हमको रात को 10 बजे या 11 बजे जब भी है सो जाएं, 6-7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए एट ए स्टेज। और बच्चे जो थक जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, उनके में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने बचपन लाइफ में देखा है कि दिन भर जब खेलते थे, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, खेल के जब घर पहुंचते तो सीधे सो ही जाते थे, खाने के भी नहीं पूछते थे।
1: यानी कि बाहर घूमना और खेलना जरूरी है,
0: फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है
1: जी।
0: और उसके लिए सबसे जरूरी है कि सुबह जल्दी उठना
1: जी।
0: तो जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप शाम को समय से सोएंगे, तो 10 से 11 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो सुबह 6-7 के बीच में अपने आप नींद खुल जाती है
1: जी। 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है।
0: 7 घंटे तो नींद पूरी हो गई, तो बॉडी क्या होती है, सोते समय डिटॉक्स करती है। आपको ध्यान नहीं होगा, हमारे बॉडी के जो हार्मोन, हमको लगता है कि सब सो जाते हैं, तो इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, ये सब उस समय एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये बॉडी में जो दिन भर के जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको निकाल

0: इस तरह से मोटिवेट अपने आप को इस तरह से रखना है एक्सरसाइज करके कि हमारा हर अंग, एक एक अंग हमारा थोड़ा एक्टिवेट मोड में रहे, और जिस अंग का कोई काम नहीं होता है वो अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, घर में खड़े होकर जॉगिंग कर लीजिए, पश्चिमोत्तासन कर लीजिए, और आजकल कुछ नहीं कर सकते तो एक सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप सूर्य नमस्कार की जो 12 मुद्राएं हैं उसमें सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज आ जाती है, और ये बहुत ऑप्शन है कि अगर उगते हुए सूरज के सामने हमने किया तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज का भी इम्पोर्टेंट मिलता है, हमें विटामिन डी भी मिल जाती है, तो हमको सब कुछ मिल जाता है।
1: कोशिश करें कि खुले में करें,
0: खुले में करें
1: जी,
0: थोड़ा सा इस जहाँ सूर्य की रोशनी हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वहां पे अपने को करना चाहिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आप हमसे जुड़े और हमारे साथ आप फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, उनकी क्या समस्या है पूछ लेते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी, नमस्कार जी, बताएं आपका नाम, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं।
2: मैं राजेंद्र बोल रहा सर, ये नॉर्थ दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
0: नमस्कार।
2: मेरी एज 75 है ये सर, जीभ में दरार सी पड़ जाती है जो मिर्च वगैरह नहीं खाई जाती, और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों में अगर सूजन आ रही है और जीभ में दबार पड़ रही है तो थोड़ा सा अपने को ब्लड के पैरामीटर्स टेस्ट करने पड़ेंगे। वैसे तो सिंपल है कि जनरली अगर आपको चमेली की पत्ती मिल जाए कहीं से तो 2-3 चमेली की पत्ती चबा के देख लीजिए, अगर जीभ की दरार ठीक हो जाती तो भी डाइजेशन से रिलेटेड मैटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैरों में भी स्वेलिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिम्टम्स आते हैं हमारे इस एज में, तो इसलिए आप प्लीज कंसल्ट करें किसी न किसी डॉक्टर को और दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं
1: जी। तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट कराइए और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, और इस एज में इस प्रकार की समस्या डॉक्टर साहब आ जाती है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी उम्र भी 75 साल की है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, और बस आगे बढ़ते जाना है, जो भी जो नियम है, जो दिनचर्या है उसे पूरी करते रहना है।

0: छोटे से मनोरंजन के बाद यानी कि गाने के बाद में एक बार फिर से हम लौट कर आ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, और आपको एक लंबा अनुभव है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर के पद पर हैं और आपको 30 वर्षों का एक लंबा अनुभव है, और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपने जो श्रोता है उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। वैसे हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे कॉल्स हैं, लेकिन पहले यानी कि मैसेज हैं और कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा बोल रहा हूँ।
0: जी राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपके?
1: पहले तो एंकर सर और डॉक्टर को नमस्कार।
0: जी राजेंद्र जी, आपको भी नमस्कार।
1: हाँ जी, मेरे सवाल है और एक जरा उससे दूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी
0: जी।
1: हाँ, पहला सवाल तो मेरा ये था कि मेरे को ना जो है पित्त प्रवृत्ति है, पित्त।
0: जी जी, पित्त की। जी
1: हाँ जी, और व्हाइट मेरी स्किन और श्वसन एलर्जी भी है, तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और डॉक्टर साहब ने हम खाना चाहिए गर्म, अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? पहला सवाल मेरा ये
0: जी।
1: दूसरा कि पुदीने के फायदे विस्तार समझाए,
0: इससे
1: क्या फायदे होते हैं विस्तार से। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो है ये, जैसे अभी आपने कहा कि ये कई लोग होते हैं कि आपने कहा 6-7 घंटे सोना चाहिए, पर कई लोग ऐसे होते हैं मतलब 3 घंटे सोते हैं तब उनकी पूरी आवाज़ें से मोदी साहब भी है, 3 घंटे सोते हैं उनकी पूरी आवाज़ें हिंदुस्तानी सीएम साहब जो है, तो इसकी क्या वजह होती है, इसके हमें क्या करना है नींद इम्प्रूव करने के लिए?
0: जी राजेंद्र जी, जी एक एक करके सवालों का जवाब देंगे जी।
2: थैंक यू राजन जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आपकी अगर पित्त प्रकृति है तो आपको ध्यान रखना है, हमने ये नहीं खाना गरम गरम खाने की बात की है, तो खाना ठंडा करके नहीं खाने के लिए पित्त प्रकृति वालों को लिए भी बोला गया है। आपको सुकोष्ण वाटर लेना है, सुकोष्ण जल लेना है पीने के लिए। सुकोष का मतलब होता है जिस ऋतु में है जैसा है उसके हिसाब से लेना है। आप अगर ग्रीष्म ऋतु में है तो ये नहीं है कि आपको एकदम ठंडा पानी पीना है, तो उसको एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर पीजिए। और पित्त प्रकृति वालों में पित्त की दुष्टि अगर होती है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज खाने पीने में तो खान पान बहुत अच्छे से पाचन हो जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी गुनगुना पानी पियेंगे तो आपको पाचन बढ़ जाएगा, आपका खान पान की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो उससे आप परेशान न हो। और यह है कि फ्रेश बना हुआ खाना खाना है, मेरा कहने का ऑब्जेक्ट ये था गरम गरम खाने का मतलब कि आपको फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। आजकल क्या होता है कि लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं फिर उसका जब जरूरत होती है तो निकाल के खा लेते हैं। ये फ्रोजन फूड का कंसेप्ट चल चुका है आजकल, आपने देखा नहीं होगा, हम तो देख रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं और सभी जगह फ्रोजन फ्रूट्स सप्लाई हो रहे हैं, वो जाते हैं यहाँ से और उसके बाद वो डीप फ्रिज में रखे रहते हैं, जैसे ऑर्डर होता है उनको निकाल के तुरंत गर्म करके खिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है जो अपने फ्रेश बने हुए खाने की क्वालिटी है। इसलिए कोशिश करें कि जब खाना बन रहा हो बनने के आधे घंटे के अंदर ही उसको कंज्यूम करें, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, खाने के साथ ये ध्यान रखना है, हमने बार बार कहा कि पेट भर के डकार मार के नहीं खाना है, हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भूख है जितना पेट है उसका 1/2 खाना है, 1/3 खाली रखना है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो जिससे कि डाइजेशन सही होगा और ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और आपने बोला कि सन एनर्जी है, सोलर से प्रॉब्लम हो रही है उनको
0: जी,
2: तो पित्त प्रधान आपका है चूंकि इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन ही रखना है और पित्त शामक योगों का प्रयोग करना है। आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, आपको प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी या ऐसी चीजें देंगे, साथ में महामंजिष्ठा जी क्वाथ देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये था, आपने पुदीने के बारे में पूछा था, पुदीने का आपको पुदीने की कोई भी गर्म चीजें नहीं खानी है, पुदीने का ठंडी चीजें आपको लेनी है। पुदीना अर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुदीना सत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो इस तरह के जब कभी इनडाइजेशन की कंडीशन होती है तब वहां पे वो हमको दोनों तरह से फायदा देता है। आपने देखा होगा कि जब हमारा हेडेक होने लगता है तो हम बाम लगाते हैं, तो बाम क्या करता है, बाम को दर्द को तो निकालता नहीं है, बाम आपके ब्रेन के सेंसेस को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके आपको नींद आ जाती है और वो सरदर्द ठीक हो जाता है, तो पुदीना के भी वही काम है इस तरीके से। वोलेटाइल

0: कंटेंट जो उतने होते हैं उसमें, वो तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को जाके, जिससे कि हमको वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आपने नींद की बात की, मोदी जी का एग्जाम्पल दिया आपने, मोदी जी जैसे कितने लोग हैं इस दुनिया में, बहुत कम लोग हैं। ऐसे हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी होते थे उनकी भी यही कंडीशन है, वो 10 बजे सोते हैं और 1 बजे उठ जाते हैं, दिनचर्या उनकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये आदत डालने की बात है। मोदी जी को आप आज देख रहे हैं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, और उनकी वो आदतें शुरू से हैं, रात को 10 बजे सो जाना, अभी तो सो नहीं पाते हैं वो, अभी तो उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वो, 4 बजे उठ के सारे अपनी एक्सरसाइज करना, योग का इतना प्रचार प्रसार, हमारे ब्रांड एम्बेसडर योग के लिए कौन है, मोदी जी है
1: जी।
0: मोदी जी खुद करते हैं उन चीजों को, और खुद करके उन्होंने प्रूव किया है कि यह ऐसा हो सकता है। तो खान पान, उनका खाना आपने देखा है कितना है, उनके खाने में 2 कौर होते हैं, पानी पीते हैं और वो सब ठीक रहते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, अडॉप्टेबिलिटी होती है, साध्यता होती है। ये हमारे साधु संन्यासी, हमारे ऋषि मुनि ये सब किया करते थे, और उनकी इसलिए लाइफ 100-100 साल तक रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इन चीजों को हम अगर प्रैक्टिस में डालते हैं और अपने लिए साध्य कर लेते हैं तो इन चीजों का रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आजकल 6 घंटे की नींद कंपलसरी है, क्योंकि हम इतने सारे फालतू के काम करते हैं, फालतू का खाते हैं, खान पान बदल गया है पूरा, इतने प्रिजर्वेटिव वाले मटेरियल खा रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए तो हमको बॉडी को रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, हम 3 घंटे और 4 घंटे सो के भी काम करते हैं, हम लोग को करना ही पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। सो आप इस बातों का ध्यान रखें प्लीज। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, थैंक यू वेरी मच।
1: हम एक व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, और ये व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से हैं। इनका कहना है कि क्या विंटर में दही खाना चाहिए, और दूध से पेट में गैस हो जाती है, क्या करें।
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन सरोज जी। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों से कभी कभी सुना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाया जाता है, लेकिन हम उल्टी परंपरा में चलते हैं। शरद ऋतु में दही का इंडिकेशन है, शरद ऋतु में दही खाना चाहिए। क्यों? हमें जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम चाहिए होते हैं वो उस समय दही में सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए वहां कहने के विधान किया गया है।
1: हम उल्टा चल रहे हैं
0: और हम लोग उल्टा चलते हैं, सोचते हैं कि गर्मी में दही खा लेते हैं तो आराम है, दही में गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ये हमारे क्लासिकल लिटरेचर यही बोलता है। और खाना भी है तो अब आप देखिए कि हम लोग जो है दही लस्सी पीने वाले काम, लस्सी पीने का काम कब करते हैं, सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में,
1: वो भी दिन में, दोपहर में,
0: दिन में दोपहर कहीं भी जाते हैं, गर्मी लगती है, चलो लस्सी पी लेते हैं
1: जी जी।
0: तो ये क्या है कि उसमें जो बैसिलस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए वो सब चीजें हमारे लिए, लेकिन क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम दही कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिन लोगों को संधिवात है, आम बात है, आम से जुड़ी बीमारियां हैं, उनको दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही क्या, उनको किसी भी खट्टी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आम है, अरे टमाटर है, नींबू है, दही है। अब बहुत सारे लोग, हम लोग कहते हैं कि हम लोग दही रोटी खा खा के, दही पराठे खा खा के तो बड़े हुए हैं और अपने अभी दही छूटा हुआ है इस समय, तो इसलिए प्रिकॉशन लेके हमको खाना है। अब आप चले जाइए गुजरात में, तो वहां पे बिना छाछ के तो खाना होता ही नहीं है, लेकिन वो छाछ कैसे बनती है आपको ये देखनी पड़ेगी। वहां एक पार्ट छाछ, एक पार्ट दही, और उसमें 4 भाग गर्म पानी मिला के उसको बनाते हैं,
1: तरीका अलग है,
0: वो अलग अलग है। तो वो चीज, वो पानी नहीं पीते फिर वो लोग, फिर वो छाछ पीते हैं, और वो छाछ फिर वो वहां डाइजेशन में हेल्प करती है, उसमें नमक, काला मिर्च और ये जीरा डाल के बनाते हैं वो लोग। तो ये चीजें क्या होती हैं कि रीजनल और सीजनल वेरिएशन, बार बार हम कह रहे हैं रीजनल और सीजनल वेरिएशन
1: जी।
0: दही अगर आप पहाड़ में बैठ के खाएंगे शरद ऋतु में तो गला पकड़ लेगा, तो खाना कैसे है वहां पे, गरम गरम रोटी में हमको हिंगुआ तक डाल के खाना है तो वो खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं
1: जी। और इनका एक और प्रश्न था कि दूध,
0: जी जी, दूध से बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है आजकल, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डेयरी मिल्क है, आप कभी जाए अपने घर में अगर अपनी गाय है, अपनी भैंस है, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन डेयरी मिल्क जितने भी है वहां पे कुछ भी करिए आप, पॉस्चराइजेशन करना पड़ता है, उनको प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अगर डेयरी का मिल्क है तो पीने में आप ध्यान रखिए, अगर अपने घर की गाय है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है दूध को अगेन डाइल्यूट करना है हमको, पानी थोड़ा मिला के डाइल्यूट करिए बहुत। आपने अगर भैंस का दूध लिया तो गाढ़ा होता है, देखते हैं आप, गाय का दूध होता है तो पतला होता है, तो गाय के दूध में प्रॉब्लम नहीं आती, भैंस के दूध में प्रॉब्लम आती है।
1: तो ये जो दूध है इसे कब पीना चाहिए, दिन में पीना चाहिए या रात में पीना चाहिए या कब पीना चाहिए?
0: हम लोग के यहाँ देखिए बच्चों को तो हम ये कहते हैं लगातार, क्योंकि वहाँ कैल्शियम की जरूरत होती है, तो हम उनको दूध सुबह शाम दोनों टाइम पिलाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जो रहा करते थे, जो हम लोगों ने बचपन में शुरू किया है, तो सुबह दूध के साथ रोटी खाते थे और रात को खाना खाने के बाद दूध जरूर पीते थे
1: जी।
0: लेकिन वो दूध बार बार कह रहे हैं कि अपना होता था और हम उसको कोई भी ऐसी चीजें नहीं खिलाते थे जो चीजें नुकसान करने वाली हो।
1: यानी कि दूध जो है कभी भी पिया जा सकता है?
0: हाँ, पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: कब्ज होने की संभावना नहीं रहती है?
0: नहीं, दूध तो कब्ज को निकालता है, संभावना नहीं रहती है। रात को जनरली हम लोग दूध जब पीते हैं तो थोड़ा सा हल्दी और गुड़ डाल के पीते हैं
1: जी,
0: बिना वैसे दूध नहीं पीते हैं हम लोग, और पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा मिलता है, तो सबको सूट नहीं करता है, क्योंकि आजकल सबसे दिक्कत ये होगी मिल्क प्रोटीन से बहुत से लोगों की एलर्जी हो रही है
1: जी जी,
0: तो बहुत से लोगों जिनको गैस वैस बनती है उनको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है बात वो
1: जी। और अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और हमारे श्रोता मित्र, आइए उनसे बात करते हैं, उनके सवाल सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत अच्छी कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही है पीछे से।
2: थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, गांव कुकनिया डिस्ट्रिक्ट करनाल है
0: जी।
2: सर हमारा अल्ट्रासाउंड में मेरा और मेरे छोटे भाई का फैटी लीवर आया था, छोटे भाई का फैटी लीवर ग्रेड 1 है और मेरा ग्रेड 2 है फैटी लीवर में। हम दिमाग की दवाइयां खाते हैं काफी सालों से, यानी मैं तो 24 साल से खा रहा और वो 17-18 साल से खा रहे जी। तो अगर आपके पास आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आ जाए तो ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम ही, और आयुष्मान कार्ड भी हमारे पास, क्या फ्री में दवाइयां भी मिलेंगी सर?
0: बिल्कुल भी नहीं, फैटी लीवर का इलाज ही केवल हमारे पास आयुर्वेद में है और कहीं है ही नहीं आपके पास। आपके खान पान को कंट्रोल करना ही इम्पोर्टेंट है, और परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप अगर सबका टेस्ट कराएंगे तो 99% लोगों के फैटी लीवर मिलेंगे क्योंकि हमने जो खाना शुरू किया है खान पान, वह हरियाणा के हैं आपने तो खान पान अच्छा ही होगा आपका, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की जरूरत है और रेस्ट जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी जो नहीं खानी है आपको, वो ऑलरेडी उन्होंने बताई होंगी डॉक्टर ने, और नहीं तो
2: कुछ नहीं पाया जी,
0: तो आप आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आके आप दिखा जाइए, क्योंकि यहाँ क्या है ना, केवल ऐसे सजेशन देना ठीक नहीं है, आपको देख के ही आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
2: ठीक है डॉक्टर, थैंक यू,
1: धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा हमसे जुड़े। और डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि ये लंघन क्या है, लंघन क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, लगता है कि आयुर्वेद से रिलेटेड है ये सब लोग
1: जी,
0: क्योंकि ये लंघन वर्ड ही संस्कृत का है। देखिए अनिल, डॉक्टर अनिल कुमार
1: कालड़ा जी
0: गुरुग्राम से पूछ रहे हैं
1: जी।
0: तो लंघन, आप डॉक्टर हैं, अगर आयुर्वेद के हैं तो आपको पता होगा लंघन क्या है। लंघन का मतलब केवल भूखा रखना नहीं है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, लंघन का मतलब है लघु आहार खाना है हमको,
1: कम आहार लेना है।
0: हाँ, जिससे कि जो डाइजेशन है वो ठीक रहे, ज्यादा खाने से। अब व्रत वाले व्रत जिस दिन होता है हम लोगों का हिंदू धर्म में, व्रत जनरली इसलिए किया गया था कि हमारा खान पान कंट्रोल रहे उस दिन, और बहुत सारे व्रत किए जाते हैं, लेकिन आजकल तो हम व्रत वाले दिन ज्यादा खाते हैं बजाय कम खाने के, क्योंकि उस समय अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं तो वो पेट भर के खा लेते हैं
1: जी।
0: तो लंघन का मतलब ये है कि अपने आप को भूखा रखना है। पहले आपने बुखार जैसे आता है तो मेनली उसकी पहली चिकित्सा लंघन चिकित्सा है
1: जी, और
0: मतलब कुछ नहीं खाना है, गर्म गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, जिससे जो भी चीजें अंदर है वो डाइजेस्ट हो जाए
1: जी। तो अब ये जो आया है मेरे पास, यानी कि हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज है, और ये है राजेश कुमार चौहान जी, कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है डॉक्टर साहब, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और इनकी बातों से तो लगता है कि ये भी मीडिया पर्सन है, और इन्होंने लिखा भी है कि जैसे कुछ लोग कभी दिन की शिफ्ट में काम करते हैं तो कभी रात की, और हमारे मीडिया के दोस्त भी, तो इनकी दिनचर्या तो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाती है, तो सोने के घंटे भी कम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिनचर्या, जो आप पत्रकार हैं, हमारे खुद के घर में पत्रकार हैं, और हम देखते हैं उनको रात को 12 बजे उनका पेपर फाइनलाइजेशन होता है, और वो 12:30 बजे खाते हैं, 2 बजे सोते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे उठते हैं तो वो ध्यान रखना है अपने को। जो पत्रकार बंधु हैं उनका काम ज्यादा रहता है उसमें, मीडिया से हम देखते हैं कि कई सारे कंडीशन आती हैं। कोशिश करें आप कि जितना काम है उसको खत्म करने के बाद जहां आपको नैप लेने का मौका मिले, 20 से 30 मिनट का सोने का नैप जो बीच में रहता है, और जब हम थक जाते हैं तो कहीं भी बैठ के सो जाते हैं, हमने ये देखा है
1: जी।
0: तो उस तरह के एक्टिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि जैसे ही आपको मिले मौका आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें। रेस्ट लेना फ्री, मेंटल फिजिकल सारा रेस्ट। तो जनरली सोने में यही होता है, तो उस समय आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर चेयर पे बैठ के चेयर योगा कर सकते हैं, आप अपने आप को काम एंड कूल कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पायरेटरी जो अपने प्राणायाम की विधियां हैं उनको कर सकते हैं, तो उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा।
1: यानी कि नींद लेना, रेस्ट करना, रिलैक्स करना बहुत जरूरी
0: है।
1: और ये एक और व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, और ये है अनमोल गुप्ता जी सरिता विहार से, और इनकी उम्र है 37 साल। कहते हैं कि मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, क्या ये सही है?
0: 37 साल की उम्र है, आप काम की वजह से साइकिल चलाते हैं या एक्सरसाइज की वजह से चलाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे।
1: जी जी,
0: अगर आप साइकिल रेसर हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है और अच्छी बात है। और साइकिल चलाना आजकल के एक्सरसाइज में साइकिल बाइसिकल चलाना एक नया इनोवेटिव आया है कि बहुत सारी एक्सरसाइज उसके द्वारा हो जाती हैं, लेकिन इतना लंबा 50
1: लगातार
0: चलाना थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा उसको अगर कम हो सकता है तो कम करें, और आपकी आदत बन चुकी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं, बचपन में हम लोगों ने 15-15 किलोमीटर साइकिलें चलाई हैं। हम लोग गांव में हम लोग जाते थे तो मामा जी लोग हम लोग को बैठा के 50-50 किलोमीटर साइकिल चला के ले जाते थे, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था।
1: जी जी,
0: तो उस कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करिए। और अगर साइकिलिंग के लिए कर रहे हैं तो खान पान का ध्यान रखिए।
1: यानी कि रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं तब तो
0: ठीक है।
1: डॉक्टर साहब, और एक हमारे पास एक मैसेज है, और इन्होंने लिखा है कि आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम ओमान।
0: यस,
1: क्या कहना चाहेंगे?
0: गुड, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओमान हमारे MOU पार्टनर हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और हम बहुत जल्दी वहाँ आयुष चेयर आ रही है।
1: क्या बात,
0: आपको बहुत ये अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं कि गुजरात से ही उसमें जा रहे हैं आयुष चेयर पे, तो आपको वहाँ भी सुविधाएं मिल जाएंगी।
1: चलिए, और अच्छी तरह से आप जुड़ सकेंगे। जी, एक फोन कॉल सुन लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: सर, मैं दृष्टि बाधित इनकी ब्लाइंड व्यक्ति राम मिलन बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी, क्या पूछना चाहिए?
3: तो आपके साथ साथ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे दौरा और मिर्गी किसी को होता है उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा।
0: नहीं, उसको तो आपको हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा
3: सर। आपके नहीं, लेकिन आप कुछ सुझाव कुछ सलाह तो दे बता सकते हैं सर। क्योंकि तो बहुत इलाज कराया सर, उसको कुछ हिसाब किताब बना नहीं, अभी भी उसको हो जाता है। मेरे एक भांजा है।
0: क्या उम्र, तो क्या उम्र है?
3: तो सर उसको वही उम्र सर होगी, मान लीजिए वही 25 के आसपास।
0: हाँ, तो आप इसमें जितने भी ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो दवाइयां ही चलती हैं मैक्सिमम टाइम, तो इसमें होगा क्या है, उनको हमें मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको योगा प्रैक्टिसेस करानी पड़ेंगी, जिससे कि वो कंसंट्रेशन थोड़ा अपना बढ़ा सकें। चीज़ों को बढ़ाएंगे तो उनको उससे बहुत फायदा मिलेगा। और आप इनको आयुर्वेद में दिखाएं लाके, इसका इलाज आपको थोड़ा आपको काफ़ी कुछ इलाज आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा इसका।
3: चलिए ठीक
1: है,
0: आप आके दिखाइए कभी वहाँ पे। बिल्कुल।
3: अच्छा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, और वो भी अपने श्रोताओं के सवाल हैं, जो मैसेजेस हैं हम उनको लेते रहेंगे।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम लौट आए हैं और हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया है और ये हैं ऋत्विक जोशी जी। इन्होंने कहां से लिखा ये तो नहीं बताया, कहते हैं कि मुझे कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, मेरी एज 45 इयर्स है, मैं इसको नेचुरली ठीक कैसे करूं आप बता दीजिए।
3: हाँ ऋत्विक जोशी जी बिल्कुल सही बात है, इस समय ऐसी कंडीशन आ रही है क्योंकि हम पूरे टाइम या तो घरों के अंदर रहते हैं या एसी में बैठे रहते हैं, तो हमें विटामिन डी कहाँ से बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको धूप में निकलना पड़ेगा, खान वान में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूध है दही है जिनसे कैल्शियम मिलता है और उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो लोग अभी खाना भी बंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको आप खाएं, इसमें प्रवाल है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, इन चीज़ों का, या किसी से कंसल्ट कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको लेके। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास, आप अपने खाने में थोड़ा सा अगर हो सकता है तो गोघृत को रखें, गाय का घी अगर आपको देसी मिल जाता है तो उसको रखें, रोटी के साथ खाएं। और साथ में सूर्योदय के समय नहीं हो सकता है तो कम से कम 8 से 10 के बीच में आप थोड़ा सनलाइट में जाके और सूर्य नमस्कार करें
2: जी,
3: थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम करें, तो आपको सन रेज जरूरी है जिससे कि वो विटामिन डी की कमी पूरी हो सके।
2: तो श्रोता मित्रों आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और आप हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे पास यानी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक मैसेज आया हुआ है और इनका नाम है अनंग उदय बिस्वाल जी, अब बुलंगीर ओडिशा से इन्होंने मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है तो गर्मी के दिन क्या खाऊं और क्या नहीं, प्लीज बताएं।
3: क्या नाम बताया आपने?
2: अनंगा उदया बिस्वाल जी हैं।
3: उदया बिस्वाल जी, तो जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने खान पान के लिए आपको मना किया होगा कि चीज नहीं खानी है, थोड़ा तेल घी कम खाने हैं आपको, ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन बाद आप खा सकेंगे, इस बात को आप गारंटी रखिए, लेकिन अभी मत खाइएगा तुरंत। और खान पान में अपने को कार्बोहाइड्रेट का पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमको वो सब चीज़ें खानी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसमें हमारा जो बाइल पिगमेंट का काम था वो ख़त्म हो चुका है, इस समय अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद आप सब कुछ खा सकेंगे। तो थोड़े दिन अभी आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, सिंपल रोटी दाल, और दाल में प्रोटीन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने को अरहर की दाल नहीं खानी है, थोड़ी मूंग की दाल खानी है, इसमें चना मटर नहीं खाना है, गुड़ खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप खाइए तो इसमें अच्छा रहेगा, लेकिन घी तेल जिसमें ज़्यादा हो वो मत खाइएगा, थोड़ा अपने आप को बचा के रखिएगा, नहीं तो फिर पेट में दर्द आपको महसूस होगा और वो दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको मेंटेन करिएगा, क्योंकि हमको खुद को हुआ था इसलिए हमें ज्यादा एक्सपोजर है इसका
2: जी।
3: और हमारा भी गॉल ब्लैडर निकला हुआ, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज हम सब कुछ खाते हैं क्योंकि इस तरह से मेंटेन किया था और हमारे लिए अभी मतलब घी तेल सब कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 1.5 साल आपको ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा
2: जी डॉक्टर साहब ये। और हमारे पास एक और मैसेज व्हाट्सएप के जरिए, ये है समर्थ जी हैं बेंगलोर से, 27 इयर्स ओल्ड हैं। ये कहते हैं आई एम अनेबल टू गेट डीप स्लीप दिस डेज आल्सो, आई एम अनेबल टू स्लीप अर्ली, आई फील वेरी स्ट्रेस्ड ड्यू टू माय करियर, आई आल्सो गेट अ लॉट ऑफ इचिंग ऑन माय स्किन, आई हैव कंसल्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट बट इट इज गेटिंग टेम्पररीली क्योर्ड, क्या कहना चाहिए?
3: Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपके जो स्ट्रेस कंडीशन है इसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है और पित्त बढ़ रहा है, जिस पित्त की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो आपको कैसी भी कंडीशन हो आपको थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करना पड़ेगा, और मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई जो चीज़ें आपको पसंद हैं जिसको आपको लगता है कि इसको सुनने से आप सो जाते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा चला के सोइए और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे, क्योंकि कई कंडीशंस हमने देखी हैं इसमें। और जनरली हम लोग तो इसमें क्या होता है कि काम एंड कूल सिचुएशन देने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को उस सिचुएशन निकाल ले लीजिए, क्योंकि आपकी एज उम्र देख के ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन जॉब की प्रॉब्लम्स को वहीं पे छोड़िए और अपने आप को पहले ठीक करिए, देन आपके पास जॉब की वो दिक्कत नहीं होगी। अपने आप को काम एंड कूल करना जरूरी है और मेडिटेशन करिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए, अपना काम आप करिए, बाकी सब कुछ छोड़िए
2: जी। और ये हैं प्रकाश जी रोहिणी से, इन्होंने मैसेज भेजा है कि मुझे कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, मेरी उम्र 72 साल की है, 2-3 दिन के बाद बहुत मुश्किल होती है, क्या करूं मैं?
3: आप जरूर कुछ ना कुछ लेते होंगे, अगर कुछ नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, त्रिफला का पाउडर रात को सोने से पहले त्रिफला का पाउडर ले, उससे अगर आराम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको आप रात को भिगो दीजिए और सुबह उसके पानी को पीजिए, तो उसको आपको आधे घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करके देखें आप, आपको कौन सा फायदा करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड कर देगा।
2: डॉक्टर साहब, ये काजल जी हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि गर्मी के मौसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मसूड़ों से खून आने या सूजन की समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और दूसरा प्रश्न उनका यह है कि क्या AIIA में आधुनिक डेंटल प्रोसीजर यानी कि जैसे कि रूट कैनाल स्केलिंग या कैविटी फिलिंग के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा मिश्रण यानी कि इंटीग्रेटिव अप्रोच किया जाता है क्या?
3: ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेशन पे ही काम कर रहा है और हमारे पास पूरी डेंटल यूनिट वहाँ पे सेपरेट है, हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है और आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी है। इस तरह के अगर कंडीशंस होती हैं तो जनरली गंडूस और कवल का प्रयोग किया जाता है, आप त्रिफला का क्वाथ का गंडूस का कवल कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप ऑल इंडिया में आके दिखा सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छी डेंटल यूनिट है, इतनी अच्छी डेंटल यूनिट आपको कहीं और नहीं मिलेगी
2: जी। और देखिए, हम क्योंकि जल्दी जल्दी प्रश्न ले रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और ये मैसेज आया है व्हाट्सएप के जरिए, इन्होंने तारीफ की है, कहते हैं कि प्रोग्राम इज वेरी वेरी गुड और थैंक्स टू यू बोथ, क्वेश्चन इज इन आयुर्वेद फॉर बीपी एंड स्ट्रोक हाइपरटेंशन प्रॉब्लम व्हाट आर रेमेडीज। ये है SM जोशी जी पुणे से, 60 साल की इनकी उम्र है।
3: जोशी सर आप बहुत दूर है, पुणे में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं आयुर्वेद के, आप ना हो तो एक बार तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज में दिखा लीजिए और जो आपने कंडीशंस बताई हैं, इन कंडीशंस में यहाँ से हम दवाई नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन को ऐड करिए अपने लाइफस्टाइल में और उससे सोएंगे अगर आप ठीक से तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, अगर कोई ऑर्गेनिक कारण नहीं होगा तो।
2: जी जी। और विक्रम सिंह जी दिल्ली से मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, कहते हैं कि सर दिन एक अंजीर खा लेने से क्या बॉडी को सारा विटामिन मिल जाता है क्या?
3: एक अंजीर तो कम है, 2 अंजीर खाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, काफी लोग बहुत खा रहे हैं, हमने देखा है लोगों ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश के साथ एक अंजीर खा रहे हैं और काफी उससे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को, तो एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा, उस कॉम्बिनेशन में आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 अंजीर कम से कम एक दिन में खानी चाहिए।
2: जी, उसे रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन हो रहे हैं।

0: जी जी कोई बात नहीं।
1: ये है आसिफ सैफ जी और ये है मेरठ से, कहते हैं कि हेलो सर, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है और सर पेट भी बहुत भारी हो गया है, बाहर आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
0: तुरंत आइए आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, दिखाइए अपने आप को और आपको पंचकर्म थेरेपी की जरूरत है, उससे आपको सबसे अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो बिना उसके फिर ये कहना कुछ भी दवाइयों के साथ ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए थेरेपी करानी पड़ेगी आपको
1: जी। और यह है सुशील कुमार भारती जी बिहार से लिखते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो जाना किस कारण से हो सकता है, इसका आयुर्वेद में क्या उपाय है, क्या इलाज है?
0: नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, केवल एक कारण नहीं होता है हाथ पैर सुन्न होने का। डायबिटीज एक मेन कारण होता है, अगर डायबिटीज है, शुगर बढ़ा हुआ है तो ये उसमें होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें होता है, तो इसलिए आप कंसल्ट करें। बिहार में कहाँ से रहते हैं मैं मालूम नहीं है, पटना में भी कॉलेज है, आप पटना में जाके दिखा सकते हैं, वहाँ पंचकर्म वालों से मिल सकते हैं, आपको उसका सही उपचार मिल जाएगा
1: जी। और चूंकि अब मेरा अपना कुछ प्रश्न है श्रोताओं की ओर से, वो भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या अम्ला यानी कि खट्टापन और लवण यानी कि सॉल्टी और मीठा और कड़वा यानी कि कड़वी जो चीजें हैं और कसैली चीजें, क्या इनका भी ऋतुचर्या में खान पान या दिनचर्या में खान पान अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग समय पे होना चाहिए?
0: बिल्कुल होता है। वैसे जनरली हमारे यहाँ भोजन को षड्रस युक्त कहा गया है कि सारे भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए। तो भोजन करते वक्त आपने देखा होगा, अपनी अपनी परंपराएं हैं कि कहीं हम लोग मीठा पहले खाते हैं फिर खाना खाना शुरू करते हैं, कहीं हम लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। तो लवण और अम्ल ये दोनों तो खाने में होते ही है
1: जी,
0: साथ में कटु और तिक्त, क्योंकि आप देखते हैं सारी मिर्चें पड़ते ही हैं उसमें, तो षड्रस युक्त भोजन का अपना इंडिकेशन है और 6 के 6 रस हमारे खाने में होने चाहिए
1: जी।
0: तो इसलिए ये कह देना कि हमको ये खाना ही नहीं खाना, ये कंडीशन वाइज डिपेंड करता है, कौन सी डिजीज है। अगर हाइपरटेंशन हो तो हम कहते हैं कि नमक नहीं खाना है, हम कहते हैं डायबिटीज है तो हम कहते हैं मधुर रस नहीं खाना है, तो उस तरीके से ये कंडीशंस आती हैं हमारे पास, तो वहां पे केवल हमारा रोक होती है। अदरवाइज आपको कोशिश ये करनी है कि षड्रस युक्त भोजन करना है
1: जी,
0: मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 के 6 रस होने चाहिए हमारे भोजन में, तो ही हमारा भोजन सबसे ज्यादा उपयोगी होता है।
1: शाकाहारी मांसाहारी फलाहारी भोजन का उपयोग कई लोग करते हैं, और क्या इसका भी दिनचर्या ऋतु के अनुसार होना चाहिए?
0: नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, अपने हिसाब से कहा जाता है, लेकिन जहां पे केवल हमारे पास आजकल की कंडीशन रीजनल और सीजनल की वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट मिल रहा है आजकल, तो वो नहीं हो सकता है। हमको रीजनल और सीजनल आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिस सीजन में जो चीजें मिलती हैं उसको वहां खाना चाहिए, इस सीजन में जो चीजें नहीं मिलती उसको वहां नहीं खाना चाहिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और हमारे श्रोताओं का भी आपने जवाब दिया, मैसेज के जरिए फोन कॉल्स के जरिए बहुत सारी उपयोगी जानकारियां दी, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारियां दी, वक्त निकाला आपने,
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको पुराने गाने अपने पुरानी जिंदगी याद दिला दी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
1: वो है कौन
2: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
0: नाम

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश की युवा शक्ति पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन के 4 सैन्य विमान, 7 नौसैनिक पोत और 3 सरकारी पोतों के गश्त लगाने का दावा किया है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में जंगलों की आग लगातार फैलने के कारण 2.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रांची में शुरू और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचेगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस। लेकिन उससे पहले आइए हम सुनते हैं मिलकर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

0: हाय दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल है। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। अस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अपने स्तर पर भी हम कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें, फल सब्जियां ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सके उन्हें हरे कूड़ेदान में डालें, और प्लास्टिक कांच पॉलिथीन जैसी चीजें नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। घर के अंदर का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत काम आएंगे ये टिप्स, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अपने वाहनों के समय समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और सर्विसिंग भी टाइम पर करवाएं। ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल हो, यानी जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कमरे या घर से बाहर निकलते सभी लाइट और पंखे बंद कर दें। अगर आसपास ही किसी मार्केट या अन्य जगह पर जाना हो तो कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर वॉक करके जाएं। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। छोटी छोटी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचाव, जितना हो उतना ही करंट का इस्तेमाल करना, यूज करने के तुरंत बाद बिजली को बंद करना। परिवार के सभी सदस्य एक बार ही मिलकर खाने से कई लाभ है, जैसे जितना कंजम्पशन है उतना ही खाना बनता है, बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है। अन्य कमरों में लाइट और फैन बंद करें। पानी की बचत करें, वॉश बेसिन में ज्यादा पानी वेस्ट न करिएगा। किचन से सब्जी फल धोने के बाद जो पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें। किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। थोड़ा ही सही, घर पर कुछ न कुछ जरूर उगाएं। हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं, आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाएं, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं। टमाटर, बैंगन, टिंडा, ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow।
2: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। 26 जुलाई दोस्तों, आज की तारीख इतिहास में रखती है एक बहुत ही खास महत्व, क्योंकि आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की अदम्य वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का ये अवसर है, और ये केवल एक विजय का उत्सव नहीं बल्कि उन अमर वीरों के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उन्हें याद करते हुए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत, जिसका नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दोस्तों, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बिल्कुल आप ही के लिए ये प्रोग्राम है, बनेंगे और बन सकते हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल और उन सवालों के सही जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। तो आज आपके लिए जो फोन लाइन्स उपलब्ध हैं उनके बारे में हम बता दें। वैसे तो हमें पहले से ही कई कॉल्स आने लगे हैं, लेकिन अपने उन साथियों के लिए भी बता दें जो इस प्रोग्राम में पहली बार या फिर पहले भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन आज भी उनका मन है कि इस प्रोग्राम में जो हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं उनके आप जवाब दें। तो हमारी फोन लाइन्स हैं दिल्ली का STD कोड आप जानते हैं 011011, और उसके बाद हमारे दो नंबर्स हैं आज आपके लिए 2342108 और 2342108 2342108। टू। तो जब हमने अपने देश के वीर सपूतों को याद किया तो सलाम करते हैं भारत माँ को भी।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस और रेनबो जीनियस में जीनियस बनने के लिए आप हो गए हैं तैयार, क्योंकि इस बात की बात को आप तक बढ़ाने के लिए हमारे पास भी कुछ बातें हैं और वो बातें हैं सवाल के रूप में और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चलते हैं पहले कॉलर की ओर और देखते हैं कि कौन है, कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
1: जी, सभी को मेरा नमस्कार। रजनीश राठी बांडोर महेंद्रगढ़ से कॉल कर रहा हूँ।
0: अरे वाह रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर। और पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई थी, आप हमारे रेनबो
1: जीनियस भी बना था मैं पिछले
0: हफ्ते। पहले एक मात्र जीनियस बने थे पिछले हफ्ते आप, तो आज भी आप बिल्कुल डट कर पहला ही कॉल आपने एकदम सही समय पर लगा दिया और सही समय पर आपसे हम जुड़ गए। तो
1: चलिए, कोशिश की जाएगी, वैसे पक्का नहीं है जीनियस ही बना दे।
0: कोशिश इम्पोर्टेंट होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम कई बार हम अपनी कोशिश में सफल नहीं भी हो रहे हैं तो भी हम बहुत कुछ सीख कर जाते हैं।
1: जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, तो रेनबो जीनियस में हम वही कोशिश करते हैं लगातार। तो चलिए रजनीश जी, आपसे पहला सवाल करते हैं आज, क्योंकि हम ऑपरेशन विजय जो है हमारा कारगिल युद्ध का,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: उसके बारे में हम बात करते हैं और हम सभी लोग मना रहे हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो युद्ध चला था, आपको ये बताना है कि किस महीने में शुरू हुआ और किस महीने तक चला, कितने समय तक चला लगभग?
1: ये जून महीने में शुरू हुआ था और जुलाई में।
0: पक्का?
1: हाँ जी पक्का तो याद नहीं है बाकी
0: अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो कारगिल वार था इसकी डेट्स में आप थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शुरू हुआ था, हमने आपसे पूछा था कि किस महीने में शुरू हुआ और किस महीने तक चला, सीधा सवाल है आपसे।
1: 4 जुलाई के आसपास, जुलाई के शुरुआत में शुरू हुआ, 26 जुलाई को खत्म हो गया।
0: रजनीश जी, इस बार आप जो है इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं। ये सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि किस महीने में शुरू हुआ और कब तक चला, तो मई में ये युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध जो था वो मई से लेकर जुलाई तक चला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त, यही होता है कई बार हम कुछ सवालों में तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ सवालों में थोड़ा सा रह जाते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप सीखते हैं और सीख कर फिर से आगे बढ़ते हैं। और हम भी आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉलर की ओर और देखते हैं कि वो कौन है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर, अपना परिचय दें।
2: नमस्कार सर, मैं पंकज बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार पंकज जी, कहाँ से जुड़े आप हमसे?
2: सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।

0: अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ से?
1: दिल्ली में मैं सर पटेल चेस जीटीबी नगर।
0: अरे वाह, क्या बात है। वो तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं।
1: यस सर।
0: अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप अभी? कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
1: सर हाँ, हम पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी।
0: अरे वाह, तो आपसे सवाल भी काफी आसान लगेंगे आपको, हर सवाल का जवाब देना जब आप पीएचडी की।
1: सर सवाल के अगर उत्तर आते हो तो आसान है।
0: ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है वो आसान लगता है
1: ना।
0: तो चलिए सबसे पहले आपसे आसान सवाल ही पूछते हैं। आप ये बताइए कि कारगिल युद्ध की हम बात कर रहे हैं, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अभियान का नाम क्या था?
1: जो ये विजय ऑपरेशन नाम और अभियान का नाम, विक्रम बत्रा जी का एक नारा से मुझे एक दिल मांगे मोर नारा याद है सर, अभियान का नाम ध्यान नहीं है।
0: लेकिन हमने आपसे पूछा है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अभियान का नाम क्या था, बहुत ही मशहूर है। और अभी अगर आपने हमें ध्यान से सुना होता, समाचार भी सुना होता आपने और हमारी बातें भी सुनी होती, तो हमने भी उसका जिक्र किया था।
1: विजय ऑपरेशन था शायद मेरे ख्याल।
0: ऑपरेशन विजय, बिल्कुल सही। आपने थोड़ा सा इधर उधर तो घूमे लेकिन फिर वापस आप सही जवाब पर आ गए। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?
1: प्रशांत महासागर।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल जल्दी से जवाब दे दिया इसका।
1: थैंक यू सर।
0: तो तीसरा सवाल आपके लिए है कि ये बताइए आप कि काला सोना किसे कहा जाता है, कि व्हाट इज कॉमनली नोन एज ब्लैक?
1: काला सोना कोयले को बोलते हैं क्या? आई थिंक कोयला।
0: आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, पहले ये साफ
1: कीजिए। आई थिंक कोयला।
0: आप कोयला बोल रहे हैं?
1: जी जी जी
0: जी। नहीं, सही जवाब है पेट्रोलियम। जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसका भी कलर काला होता है, ठीक है। और वो आप जानते ही हैं कैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाकी चीजें कैसे होती हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है काला सोना।
1: सर अच्छा लगा सर बट आपके साथ बात करके।
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आप इसी तरह से तैयारी करते रहे और पीएचडी कर रहे हैं, इसी तरह से जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं अपना ये कार्य, आप आगे बढ़े और देश को गर्व करने के मौके दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
0: तो दोस्त, हमारे दो कॉलर तो हमारे साथ जुड़ चुके और उन्होंने भी सवालों का जवाब देने की कोशिश की। आप भी चाहे तो हमारे कुछ सवालों का जवाब देकर बन सकते हैं रेनबो जीनियस। तब तक आप कोशिश करिए और हम आप तक पहुंचाते हैं ये एक गीत।
2: सुध है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस और आपको भी मिलेंगी बधाइयां जब आप बनेंगे रेनबो जीनियस। हम चाहते हैं कि आप जीते और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। जो आप वो बातें तो पहुंचाते ही हैं आप अपने संदेशों के जरिए, साथ ही आज आपसे बात करने का भी मौका है इस प्रोग्राम में। तो हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं और करते हैं उनसे बातें। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो पर, अपना परिचय।
1: नमस्कार सर, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, कुतुबपुर हिसार हरियाणा से।
0: अरे वाह, क्या बात है, हरियाणा से हमारे कई साथी जुड़ रहे हैं लगातार। रामधारी जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताएं, आपने नाम बताया, जगह बताई, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, पुलिस में आप, तब तो थोड़ा आपसे सवाल भी कुछ उसी तरह के पूछने पड़ेंगे। आमतौर पर पुलिस से सवाल पूछने का मौका कम ही मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो चलिए, रेडी हैं आप खेलने के लिए रेनबो जीनियस में सवाल जवाब का ये सिलसिला चलाएं?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए आपसे पहला सवाल हम पूछते हैं और ये सवाल जो है आपसे थोड़ा आसान ही लग रहा है वैसे तो आपके लिए, क्योंकि पुलिस के लिए तो हर चीज ही आसान होती है। आपको ये बताना है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी?
1: वेस्ट बंगाल कलकत्ता शहर में चली।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। और दूसरा सवाल आपके लिए है बिल्कुल तैयार, आपको ये बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है?
1: ये ब्रह्मपुत्र में है, असम।
0: अरे वाह, क्या बात, आप गए हैं कभी उधर?
1: सर पढ़ा है, लेकिन एक वहाँ पर कामाख्या मंदिर है, उसके बारे में मैं मतलब जैसे मेरे को लगता है कि कुछ पढ़ना चाहिए, तो मैंने कामाख्या माता मंदिर के बारे में पढ़ा है और माजुली द्वीप के बारे में भी पढ़ा है, बुक्स नहीं, कभी मौका तो नहीं मिला अभी तक।
0: तो LTC वगैरह लीजिए, जाइए, अच्छा रहे।
1: LTC सर शायद ये लास्ट ही रहेगी, अब बंद ही होने वाली है, तो कोशिश करूंगा कभी मैं जाऊं, कामाख्या माता मंदिर देखने की मेरी एक इच्छा है।
0: अच्छा चलिए, दो सवालों का आपने दे दिया है सही जवाब, अब तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे?
1: फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनोमर थे सर।
0: आपको एक ही बताना है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे?
1: आपको फिजिसिस्ट भी थे, एस्ट्रोनोमर, फिजिसिस्ट थे सर।
0: फिजिक्स से जुड़े हुए थे
1: जी।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपका ये भी सवाल जो था उसका भी आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, तीन सवालों का सही जवाब दे चुके हैं आप रामधारी जी, और आपके लिए बस दो ही सवाल हैं जिनको पार करना है रेनबो जीनियस बनने के लिए। तैयार हैं आप?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए तो ठीक है, आप तैयार हैं तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं अपने सवालों के साथ। अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
1: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को।
0: क्या बात है, आप एकदम पढ़ाई में लगे हुए लग रहा है कि आप समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। चार सवालों के आपने सही जवाब दे दिए हैं।
1: जब भी टाइम मिलता है सर मैं पढ़ लेता हूँ और बाकी ऑल इंडिया रेडियो से जो भी न्यूज वगैरह आती है उनको मैं सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने कही, और हमारी भी कोशिश होती है कि अपने अपने अलग अलग जो कार्यक्रम है उनके जरिए हम आप सभी तक तरह तरह की जानकारियां पहुंचाएं और लोगों तक जो ये इंफोटेनमेंट लगातार हम पहुंचाते रहते हैं तो उसको यूं ही जारी रखें। चलिए आप एक पांचवा सवाल जो आपको रेनबो जीनियस बना देगा, आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? Which is the highest waterfall in the world? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
1: ये सर है, पढ़ा है मैंने।
0: पढ़ा है तो बताइए इसका जवाब, बताइए।
1: वो सर वेनेजुएला में है सर, ये एंजल जलप्रपात है।
0: क्या बात है रामधारी जी, आपके लिए तालियां बनती है क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं पांचों सवालों के, और आज के आप बनते हैं हमारे रेनबो जीनियस। तो दोस्तों हमें पहले रेनबो जीनियस मिल चुके हैं, लेकिन पहले हैं आखिरी नहीं है, क्योंकि आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। और रामधारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार पढ़ते लिखते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, और जिस तरह से आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: तो दोस्तों हमारे साथ रामधारी अवाना जी जुड़े जो कि पुलिस में है, और इन्होंने पांच सवाल हमने इनसे पूछे अलग अलग क्षेत्रों से और इन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब। और आप भी चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे ये अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स दो इस वक्त उपलब्ध है आपके लिए, 011 जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है वो आप लगाइएगा, उसके बाद नंबर है हमारा 2342108080 और 2342108022 2342108023421082।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश और आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं फोन कॉल्स के जरिए। हमने आपको बता ही दिया कि कैसे आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो देखते हैं हमारे और कौन साथी हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: जी नमस्ते, मेरा नाम आकाश है।
3: आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में और बता दीजिए।
4: मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ।
3: तो ये भी एक कमाल की बात है कि आमतौर पर ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जिनसे आप सवाल कर पाए, जैसे पुलिस, टीचर। बच्चे कहाँ कर पाते हैं सवाल, बच्चे तो सवाल का जवाब ही पाते हैं आमतौर पर, लेकिन सवाल सीधे करना। खैर, आज आप दूसरी स्थिति में हैं। आज हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप उसको जवाब देंगे, ठीक है आकाश जी? तो तैयार है आप खेलने के लिए रेनबो जीनियस में सवाल जवाब का ये सिलसिला चलाए? आपसे पहला सवाल हम पूछ रहे हैं, आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया?
4: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
3: कहाँ पर है ये?
4: अभी मुंबई में है।
3: मुंबई बंदरगाह आप कह रहे हैं?
4: हाँ, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट।
3: मुंबई पोर्ट, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और पहले सवाल का आपने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, एक टीचर के लिए कोई भी सवाल पूछते समय हमारे मन में रहता है कि ये तो पक्का इनको आता होगा, तो ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो पूछते हुए भी मेरे मन में ये है, लेकिन सवाल तो हम आपसे पूछेंगे जरूर। तो बताइए ये कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के
4: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।
3: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपने ये भी दे दिया है। और दो सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। तो तीसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? Who was the first recipient of the परमवीर चक्र?
4: मेजर शैतान सिंह। परमवीर चक्र रेसिपिएंट।
3: हाँ, परमवीर चक्र रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र,
4: जिन्होंने कारगिल की वॉर, कारगिल नहीं सॉरी, वो भारत पाकिस्तान वॉर जीती थी।
3: आपका वैसे तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपकी ये कोशिश जो है वो सही जवाब जो है उससे थोड़ा सा दूर रह गई है आकाश जी। सही जवाब हम आपको बता दें?
4: हाँ जी सर, बता दीजिए।
3: इस सवाल का सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा।
4: तो अच्छा, बिल्कुल
3: हाँ, तो सही जवाब आपको मिल गया आकाश जी। बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेनबो जीनियस में पार्टिसिपेट करने के लिए।
4: धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, आकाश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े और इन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए बिल्कुल सही, कुछ सवालों के जवाब देते देते थोड़ा सा रह गए, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोशिश करने से हम बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लेते हैं, हमारी कोशिश आगे बढ़ती है। और अगले एक हमारे और कॉलर है, आइए देखते हैं कि कौन है वो। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, हैव ए नाइस डे।
3: आपको भी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? रुकिए केशव जी।
5: हाँ,
3: ये देखा आपकी आवाज से ही मैंने पहचान लिया आपको।
5: अरे सर, क्या क्या, मेनी मेनी थैंक्स।
3: कैसे हैं आप?
5: आई एम फाइन सर, ओके, आई एम अच्छे है।
3: अच्छा ही रहना चाहिए। और तैयार हैं आप सवालों का जवाब देने के लिए?
5: क्लियर सर, आई एम गेट रेडी।
3: चलिए ठीक है, तो आपसे पहला सवाल हम करते हैं, आप ये बताइए। अच्छा, आपने मुझे तो पता है आप कहाँ से, लेकिन हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं उनको भी तो बता दीजिए कि आप कहाँ से हमसे जुड़े हैं। आप कहाँ रहते हैं?
5: मैं घर में सर, त्रिपुरा।
3: अच्छा, त्रिपुरा में। अच्छा, घर में रहते हैं और त्रिपुरा में इनका घर है। चलिए सबसे पहला सवाल आपसे,
5: अगरतला।
3: बिल्कुल बिल्कुल, अगरतला में है। तो सबसे पहला सवाल आपसे हम आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन?
5: सर,
3: व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन?
5: शताब्दी एक्सप्रेस।
3: आप ट्रेन में कम बैठ रहे हैं ऐसा लग रहा है केशव जी हमें।
5: और वंदे भारत एक्सप्रेस।
3: आपने आप दो ऑप्शंस आपने दिए हैं, आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन चुनना होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप?
5: वंदे भारत। वंदे भारत,
3: चलिए ठीक है, आपने कोशिश की और आपने दूसरी बार में सही कोशिश की। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है बिल्कुल सही जवाब है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन है। और पहले सवाल का जवाब आपका ठीक हो गया है, तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड?
5: 1945,
3: 24 अक्टूबर। अरे वाह, बिल्कुल एकदम सही जवाब आपने दिया है और दो सवालों के जवाब आपने आज तो सही दे दिए हैं। और बस तीन सवाल दूर हैं आप हमारे रेनबो जीनियस बनने से। केशव जी, अगला सवाल आपके लिए, आप ये बताइए कि रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड?
5: ब्लड का साउंड इज काइंड वेरी स्लो।
3: ओके,
5: व्हाट इज,
3: आपसे हमने पूछा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड?
5: इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा,
3: अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा लग रहा है केशव जी आज आप हमारे रेनबो जीनियस बनने ही वाले हैं, दो सवाल दूर हैं आपस। तो चलिए अगला सवाल आपसे और पूछ लेते हैं। और अगला सवाल आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि दांडी मार्च किस साल शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड
5: 12 मार्च 1930।
3: अरे वाह, क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट डेट आपने बताई।
5: इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल इवेंट फॉर इंडियन, स्ट्रगलिंग लाइफ फॉर इंडियन
3: इंडिपेंडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सभी लोगों को अपने आजादी के उस संघर्ष पर, आजादी की लड़ाई पर गर्व है। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और अब चार सवालों के आपने जवाब सही दे दिए। कुछ अब ये बताइए केशव जी, कुछ तैयारी करके आए आप इस बार? पिछली बार से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज इस बार आप। हेलो
5: हेलो सर,
3: केशव जी, केशव जी, मैं सिर्फ बस ये सवाल आपको रेनबो जीनियस बनाने के लिए नहीं है, ये मेरी अपनी जिज्ञासा थी कि क्या आपने इस बार कुछ अलग से तैयारी की है जो सभी सवालों के जवाब एकदम सही दे रहे हैं?
5: आई हैव रेड मेनी बुक्स सर, बिकॉज आई एम ए ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर, दैट्स व्हाई आई हैव टू रेड मेनी बुक्स एंड आई हैव टू पार्टिसिपेट इन मेनी क्विज कॉम्पिटिशन, सो दैट्स व्हाई सर, दो आई एम above 60 years old, sir. Still today, I am very, I want to remain update.
3: क्या बात है सर, बहुत अच्छा।
5: Happening around the world, what is happening in our country. So I want to remain always alert, come on, to update myself. That's
3: क्या
5: why.
3: बात है, ये बहुत बहुत अच्छी बात कही है, लगातार अपने आप को एनरिच करते जाना, जानकारियां जुटाना और उसमें लगातार अपने को लगाए रखना और नई नई चीजों के बारे में जानना, ये जो आपका उत्साह है वो बहुत ही शानदार है। चलिए लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं और ये सवाल आपको बनाएगा रेनबो जीनियस, तैयार हैं आप? आपको ये बताना है कि हॉकी में प्रत्येक टीम के मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन द फील्ड फॉर ईच टीम इन हॉकी एट वन
5: टाइम?
3: अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है केशव जी, आज फिर से हमें एक और हमारे रेनबो जीनियस मिले हैं। और आज
5: मेनी मेनी थैंक्स सर, मेनी मेनी थैंक्स यू, मेनी मेनी थैंक्स, यू आर रियली एनकरेजिंग, मानी दैट इज कॉल्ड यू आर एनकरेजिंग प्रेजेंटेशन, योर वॉइस वेरी वेरी एनकरेजिंग,
3: थैंक यू,
5: वेरी इंस्पायर्ड यूर हियरिंग यूर सर, मेनी मेनी
3: थैंक यू, थैंक यू सो मच केशव जी। और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से आपका उत्साह आपकी आवाज में झलका, और हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, विदेशों से भी सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमें मिल गए हमारे दो रेनबो जीनियस, आज तो कमाल ही हो गया है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, रेनबो जीनियस बनने का आपको मौका मिल रहा है और आप बन रहे हैं और सवालों के सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए अब एक अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और उस गीत के बाद देखते हैं कि और कौन है जो रेनबो जीनियस बनने की कोशिश में हम तक पहुंच रहे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मंगल भवन मंगलहारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश और आप मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आपके साथ जो बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ आप सवालों के सही जवाब भी दे रहे हैं। अब तक हमें आज के इस प्रोग्राम में 2 रेनबो जीनियस मिल चुके हैं और दोनों ही हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनके हमारे रेनबो जीनियस बन सकते हैं और चलते हैं अब देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है जो रेनबो जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं हो पाए इनसे बात, ऐसा लग रहा है फोन कट गया, लेकिन ये है। हेलो
7: हेलो
8: जी, नमस्कार सर।
6: जी नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो पर। आप सीधे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दें।
8: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
6: अच्छा हरियाणा से उमेश जी। उमेश जी ये आज हरियाणा के हमारे 2 साथी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनके मित्र तो नहीं है?
8: बिल्कुल उनके मित्र हैं।
6: अरे वाह, क्या बात, लग ही रहा था मुझे कि सारे मित्र एक साथ होंगे और उन्होंने कहा चल भाई ईव तो ना कर लिया, मेरा नंबर है ना?
8: नहीं, एक साथ तो नहीं है, बहुत दूर दूर सुन रहे हैं, लगभग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है सबकी।
6: अच्छा चलिए ठीक है, दूरियां दिलों की होती है, रास्ते तो घंटे में लग जाते हैं। और
8: नहीं घंटों में भी नहीं सर, FM रेनबो सुन रहे हैं, सेकंडों में चल रहे हैं।
6: क्या बात है, आप तो बहुत सुपर फास्ट हैं, आप तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ऐसा लग रहा है आप सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए आपसे सवालों का जवाब हम मांगते हैं। तैयार हैं आप?
8: कोशिश करते हैं
6: ये कोशिश करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना फिर वो कुछ तगड़ी ही कोशिश कर देते हैं। तो चलिए आपसे पहला सवाल हम पूछते हैं, आप ये बताइए कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है?
8: विटामिन के।
6: बिल्कुल सही जवाब, आपने पहला सवाल का जवाब एकदम सही दे दिया है। अब दूसरा सवाल आपके लिए है कि भारत में GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? When was the goods and services tax implemented in India?
8: 2017।
6: बिल्कुल, और इत्तेफाक से वो भी जुलाई का ही महीना था।
8: जी
6: बिल्कुल, तो आपके 2 सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं बिल्कुल सही। और तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और तीसरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? Which was the India's first indigenous सुपर कंप्यूटर?
8: परम।
6: बिल्कुल सही जवाब, आगे भी कुछ उसका पूरा नाम बताना चाहेंगे कि परम से आप परम संतुष्ट हैं?
8: आपका काम चल रहा है तो परम से ही चला लीजिए।
6: ये बात ठीक है, चलिए ठीक है, 3 सवालों के आपने जवाब दे दिए हैं बिल्कुल सही। और अब 3 सवालों के बाद अब 4th सवाल की तरफ बढ़ने का समय आ गया है और अब आपसे सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि सन 1857 का जो हमारा आजादी का जो संघर्ष हो रहा था, 1857 का विद्रोह, उसमें जो प्रमुख केंद्र कानपुर में किसके लिए खास तौर पर जाना जाता है, कानपुर में कौन थे?
8: चाचा टोपे और नाना साहब।
6: मैंने दोनों पर कुछ नहीं बोला है, अब आपको 2 नाम आपने बोले हैं, आपने अपने आप ही अपने ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं, आपको सिर्फ एक नाम बताना है।
8: सर दोनों ही थे वैसे तो, पर आप सस्पेंस में डाल रहे हैं तो मैं नाना साहब के साथ जाना चाहूंगा।
6: चलिए नाना साहब बिल्कुल सही जवाब, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो कितने हो गए आपके सही जवाब, गिने आपने?
8: आप गिनते रहिए सर।
6: 4 हो गए हैं आपके, और 1 सवाल का अगर आप जवाब और सही दे देते हैं तो आप आज के हमारे रेनबो जीनियस बन सकते हैं। तो आपसे ये जो सवाल हम पूछने वाले हैं, वैसे अच्छा, इतना तो आपसे बातें हो गई हैं, अब समय में देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अगले जो कॉलर हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए, फिर सवाल हम पूछते हैं आपसे।
8: जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, हरियाणा पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहा हूं अभी।
6: क्या बात है, एक और हमारे साथ ही रामधारी जी, वो भी हरियाणा पुलिस से मिले।
8: जी बिल्कुल, वो हमारे अजीज दोस्त हैं।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बढ़िया होता। आप ऐसा तो नहीं है ना कि आवाज बदलकर रामधारी जी ही बात कर रहे हैं? चलिए नंबर तो हम नहीं निकलवाएंगे, लेकिन हाँ एक सवाल और निकालेंगे जो आपको रेनबो जीनियस बना सकता है। आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनल।
8: 1935।
6: राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं हम, स्थापना पे चले गए आप।
8: 1949।
6: अब आपने दो ऑप्शन थे आपके पास, आप पक्का श्योर हैं आप इस आंसर के लिए?
8: हाँ, सर, 1935 से मना कर दिया तो 1949 होगा।
6: अच्छा चलिए ठीक है, आपका ये भी जवाब जो है बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि आपने एक तरफ तुक्का लगाया लेकिन उससे हमें तो लगा था कि शायद आप कुछ और वर्ष ले जाएंगे इधर उधर, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप भी बनते हैं आज के हमारे रेनबो जीनियस। क्या बात है, हरियाणा पुलिस कमाल कर रहे हो, छा गया तो सही।
8: धन्यवाद सर,
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्त। और इस प्रोग्राम का
8: एक लिसनर रोल लीजिएगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे।
6: समय को देखते हुए ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चलते
8: नहीं, ले सकते हैं आप कर सकते हैं।
6: कैसे कर सकते हैं,
8: अभी 3 मिनट बाकी हैं।
6: 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन दोस्त हमारे जो अगले प्रेजेंटर है वो स्टूडियो में आ चुके हैं, और उनके लिए मुझे ये सीट जो है उनको एक आध मिनट पहले तो देनी चाहिए ना, ताकि वो बैठ जाए।
8: ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगे।
6: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से खेला आपने, आपको भी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों रेनबो जीनियस में आज का सफर बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, जानकारियां बढ़ाते रहिए, क्योंकि किसी दिन आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। रखिए अपना ख्याल, चलते चलते ये गीत आप सभी के लिए, क्योंकि आप लगातार सुनते हैं एफएम रेनबो, तो लगातार यूं ही सुनते रहिए और जो इंफोटेनमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं उसका लुत्फ उठाते रहिए। नमस्कार, राजेश को दीजिए नमस्ते, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है, जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है, और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
0: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची-ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
3: On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. He gave an example of waste to wealth from Sitamarhi in Bihar, where waste is being recycled to create attractive benches.
1: बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: Prime Minister Narendra Modi is interacting with the participants of Viksit Vibrant Village Program 2026 through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory are sharing their experiences with the Prime Minister. The Viksit Vibrant Village Program provides participants with first-hand exposure to the socio-economic landscape, cultural heritage and developmental aspirations of India's frontier regions while fostering community participation, national integration and a deeper understanding of the strategic importance of border villages. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Later, speaking to media, Mr. Joshi said he is currently holding review meetings to gain a comprehensive understanding of the ministry's functioning, policies and ongoing initiatives. The Ministry of Jal Shakti has said that Raj Nandgaon district in Chhattisgarh has emerged as a national front runner in water conservation through scientific planning and community participation under the Catch and Rain campaign and Mission Jal Raksha. More than 60,000 water conservation and recharge structures have been created across 662 villages. Over 500 defunct borewells have been converted into recharge shafts. More than 600 injection wells have been linked with over 1,700 mini percolation tanks and over 2,500 water bodies have been geotagged. At the ongoing Commonwealth Games, India's Rishikant Singh Chanambam won the silver medal in the men's 60kg weightlifting event in Glasgow today. Rishikant lifted 121kg in the snatch, setting a new Commonwealth Games record before Malaysia's Muhammad Ani Kasdan equaled the mark. The silver medal is India's second medal at this year's Commonwealth Games and the first in an able-bodied event. In men's cricket, India were 86 for 1 in 8.3 overs against Zimbabwe in the third and the final T20 international in Harare when reports last came in. Earlier, the visitors won the toss and elected to bat. Earlier today, India reclaimed number one spot in the ICC men's T20 ranking after taking an unassailable 2-0 lead against Zimbabwe. And with that, we end this news bulletin.
4: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। লগতে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ সমান্তৰালভাৱে প্ৰচাৰিত হৈ আছে নিউজ অন এয়াৰ মোবাইল এপত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত আছো মই ৰুমি দাস, আৰু এতিয়াৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত পপি চন্দ, কৌস্তভ দাস, বিবেক শৰ্মা, ট্ৰান্সমিটাৰত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আৰু মৃগাংক কৃষ্ণায়ত্ৰেয়। এতিয়া আগবঢ়াইছো যুৱক যুৱতীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান যুৱবাণী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে সৰফিৰোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength in India's cultural ethos. Mr. Modi made the remarks while interacting with participants of the Viksit Vibrant Village Programme 2026 through video conferencing today. More than 400 young participants from all states and union territories shared their experiences with the Prime Minister. During the interaction, Mr. Modi highlighted the community participation, national integration and awareness about the strategic importance of border villages.
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
3: Prime Minister Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
3: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. The Prime Minister also said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. Union Minister Prahlad Joshi today assumed the charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Tenue and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Minister of State for Education Jayant Chaudhary and several senior ministry officials attended the meeting. The Indian Embassy in Ukraine today said that it is closely monitoring the situation following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odisha yesterday. The embassy said that four Indian nationals were on board the vessel. It added that two of them have been confirmed safe, while information about the other two is still awaited. The embassy further said that search and rescue operations are underway and that it is in constant touch with the concerned authorities. At the ongoing Commonwealth Games, India's Rishikant Singh Chambam won the silver medal in the men's 60-kilogram weightlifting event in Glasgow today. Rishikant lifted 121 kilogram in the snatch, setting a new Commonwealth Games record before Malaysia's Muhammad Ani Kasdan equaled the mark. Malaysia's Muhammad Ani Kasdan clinched the gold medal with the Commonwealth Games record total of 273 kilograms. The silver medal is India's second medal at this year's Commonwealth Games and first in an able-bodied event. Earlier, para powerlifter Jandu Kumar opened India's medal account with the bronze in the men's heavyweight event. And in men's cricket, India have set a target of 193 runs for Zimbabwe in the third and the final T20 international of series in Harare. Opting to bat, India posted 192 for 5 wickets in their allotted 20 overs. Vaibhav Suryavanshi starred with bat, scoring 81 of 49 balls, while Ishan Kishan contributed 29 of 26 deliveries. For Zimbabwe, Brad Evans took 2 wickets. India made 2 changes to their playing 11, with Suryansh Hegde and Ashok Kumar replacing Shivam Dubey and Prince Yadav. And with that, we end this news bulletin.
0: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটি। আজিৰ গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটি আগ ধৰিব দিব্যজ্যোতি কলিতাই।
4: গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটিলৈ মই দিব্যজ্যোতি কলিতাই সমূহ শ্ৰোতাকে আদৰণি জনাইছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি শ্ৰোতাৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু তেওঁলোকৰ ভাল লগা গীত একোটি বজাই শুনাও। আজিও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহকচোন আজিৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমগৰাকী শ্ৰোতাৰ সৈতে কথা পাতো আৰু জানি লওঁ তেওঁৰ মনৰ অনুভৱ। নমস্কাৰ, গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব।
5: নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়ন্ত কুমাৰ ডেকা, মই গুৱাহাটীৰ নাৰাংগীত থাকো।
4: যিহেতু আপুনি এগৰাকী গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা, আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰূপান্তৰ দেখিছে, এই গুৱাহাটীৰ ৰূপান্তৰ সম্পৰ্কে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক কি জনাব?
5: পুৰণি গুৱাহাটী আৰু নতুন গুৱাহাটীৰ পাৰ্থক্য বহুত। বাট পথৰ পৰা মানুহৰ জীৱন যাপনৰ দিশটো লৈ ইয়াতে এটা সময়ত সেউজীয়া পথাৰো দেখিছোঁ, গুৱাহাটীৰ নাৰাংগীতে দেখিছোঁ, আৰু আজি সেই গুৱাহাটীৰ নাৰাংগীতে ফ্লেটো দেখিছোঁ। কিন্তু ফ্লেটৰ লগতে ইয়াতে বাঢ়ি অহা কৃত্ৰিম মানুহ দেখিছোঁ। সেই সময়ত কৃত্ৰিম বান নাছিল, তাতে জলগেলি কৰা ল'ৰা ছোৱালীকে দেখিছিলোঁ। এতিয়া কৃত্ৰিম বান দেখোঁ, লগতে মানুহৰ অসন্তুষ্টিও দেখোঁ, তথাপিও গুৱাহাটীৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহটো কিন্তু একবিন্দু কমি অহা মই দেখা নাই।
4: ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শ্ৰোতাৰ অনুৰোধৰ গীত এটি বজাই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কওকচোন, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আপুনি আজি কোনটো গীত শুনিবলৈ ভাল পাব?
5: জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ যিকোনো
4: আপোনাৰ প্ৰিয় গীতটি আমি বজাই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।

0: শ্রোতাসকলে গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰথমটি অংশ শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তা শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰৱাচিকা নিধিহি ঝাহ। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमंत्रिणः उद्बोधनम्। प्रख्यापितं तेन सामूहिक सहभागितायाः वैशिष्ट्यम्। कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रभृतयः हुतात्म वीरेभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयन्। प्रधानमंत्रिणा अद्य कारगिल विजय दिवसे राष्ट्रस्य अतुल्य हुतात्म पुरुषाः ससंभ्रमं संस्मृताः प्रोक्तं च यत् देशाय तेषां महाबलिदानं सर्वान् गौरवपूर्णान् करोति। मातृभूमेः रक्षणाय हुतात्म वीरेभ्यः राष्ट्रपत्यादिभिः भावाञ्जलिः समर्पितः। कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मंत्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्को नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायां अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्त्रोत्रो वर्तते। श्रीमोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26-2000 वर्षस्य विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्तालापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतं अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति।

0: यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः सम्बोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते, यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य संपूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: श्री मोदी न्यगादीत यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरी इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम-1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपनानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरवगौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रहः अभियानमधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापी अभियानम् अविरतम प्रचलति।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: अद्य मन की बात इति मनोगतम कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वं ग्लास्को नगरे प्रारब्धासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु सहभागिनं प्रति एकं क्रीडकं प्रति एकः भारतीयः जयघोषं करोति। अनेनैव सह तेन विज्ञान ओलंपियाड स्पर्धानां उल्लेखो विहितः, यत्र विपुला संख्यानां छात्राणां सहभागिता भवति। अस्मिन् संस्करणे प्रधानमन्त्रिणा कश्मीरस्य पारम्परिक वागुकटस्य चर्चा अपि कृता। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशः सम्प्रति लोकल फॉर वोकल, स्थानीय वस्तूनां प्रोत्साहनम् इति मन्त्रेण सह अग्रे सरति। गणेशोत्सवावसरे POP निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनांके भारत रत्न विभूषितस्य डॉ APJ अब्दुल कलामस्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉ कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृत समीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्त मासस्य 15 दिनांके आचरणीयस्य स्वातन्त्र्य दिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च MyGov मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तर नवदशतमे वर्षे संवृते कारगिल समरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीय सैनिकानां अतुल्य वीरतायाः सम्माननाय अद्य अशेषे हि देशे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते। अयम दिवसः अस्मिन् संग्रामे पाकिस्तानस्य उपरि भारतस्य ऐतिहासिक विजयस्य तथा ऑपरेशन विजय इति सैन्याभियानस्य सफल समाप्तेः 27वं वार्षिकोत्सवं व्यंजयति। अभियानावधौ भारतीय सैन्य बलैः जम्मू कश्मीरस्य कारगिल जनपदे पाकिस्तानीय सैनिकैः आतंकवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समरांगणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्म वीर सैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकांतर्जालीय पटले स्वकीय संदेशे राष्ट्रपति पदासीना उक्तवती यत् सैनिकानां अतुल्यं शौर्यं अविचलः संकल्पः परम देशभक्तिश्च भारतीय सशस्त्र सेनानां पारंपरिक गरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेश कार्य मंत्रालयेन अद्य एका सुरक्षा परामर्श विज्ञप्तिः प्रसारिता यस्यां कृष्ण सागर क्षेत्रे संचरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिक पोतेषु सेवा नियोजनम् इच्छन्तः भारतीय नागरिकाः एतादृश दायित्व स्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्त सुरक्षा संकटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहं उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93.1 धावनांकानां लक्ष्यं उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 किलोग्राम मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान्। इति वार्ताः।
2: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠান সূচীৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টছ আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা।
3: অনুষ্ঠানটিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মই দিব্যজ্যোতি কলিতাই সকলোকে আদৰণি জনাইছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, অনুষ্ঠানত এবাৰ জনোৱা হওক অন্য এগৰাকী শ্ৰোতাৰ মন অনুভৱ। নমস্কাৰ, প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব।
4: মই লৰঘাটৰ ছোৱালী হয়, মোৰ ঘৰ গাঁও যোজি।
3: আপোনাৰ নামটো জনাব।
4: মোৰ শ্ৰী উনিমানা।
3: আমাৰ দৰে আপুনিও আপোনাৰ ল'ৰালি কালটো এসময়ত এৰি থৈ আহিছে। যদি শ্ৰোতাসকলক আপোনাৰ সেই ল'ৰালি কালৰ বিষয়ে বা শৈশৱৰ বিষয়ে অলপ কৈ শুনাই নিশ্চয় ভাল লাগিব।
4: হয়, মই ল'ৰালি কাল আমাৰ দিনবোৰ আগৰ দিন আছিলতো, সেইকাৰণে আমি মানে এনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। আগৰ দিনবোৰত ফোন নাছিলে আৰু আমি ঠাৰি চাৰি লৈ স্কুলত গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা আহি খেল ধেমালি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আহি আমি খেলিব যাওঁ, ৰোৱা বুটব যাওঁ, মাছ মাৰিবলৈ যাওঁ, গাঁৱৰ ছোৱালী হয় আমি।
3: ধন্যবাদ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শ্ৰোতাৰ ভাল লগা গীত এটি বজাই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।
4: এতিয়া মই ভাল পোৱা গান হল জুমিনৰে গান গালে মই ভাল পাওঁ।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45ৰ পৰা সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15ৰ পৰা স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা শুনিবলৈ পাব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
4: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
5: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित

0: होगी। इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: to achieve international acclaim in santoor playing.
1: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha मात्र 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी और आगे चलकर प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती है।
0: डॉक्टर वर्षा जी बिगेन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव्ड प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी। शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मास्टर पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी। अलॉन्ग विथ बींग अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, she also holds the proud distinction of being the first female santoor player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santoor concerts abroad.
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
0: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट कल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, डॉक्टर वर्षा जी हैज बीन ऑनर्ड विद सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल एकोलेट्स, इंक्लूडिंग द फर्स्ट लेडी अवार्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड MP गवर्नमेंट शिखर सम्मान ऑल्सो।
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
0: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। When her fingers dance on the 100 strings of santoor, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santoor playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apni santoor vadan ki shuruaat raag jhunjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat जो त्रिताल में है, मध्यगत एक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झिंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्यगत इन एक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल। Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a drutgat in teen tal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र रात पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज

0: मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. The main function of the Kargil Vijay Divas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow today. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85-kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105-kilogram in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190-kilogram. With this victory, Meerabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Meerabai Chanu on her gold medal victory. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha tomorrow. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall tomorrow. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts. The sacred Adharapna ritual of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being solemnly observed on their respective chariots at Puri in Odisha this evening, drawing thousands of devotees. During this unique post-Rath Yatra ceremony, the Holy Trinity is offered a specially prepared sweet beverage in large earthen pitchers. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Early opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: Ea Akashbani Guwahatir Pragjotishpur etia homoy nikha 11 baji 10 minute 10 second goise iar loge loge antopori ajir prasaranor kailo anusthan prasaran mukoli kara hobo pua 5:30 bajat ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই ৰুমি দাসে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি, জয় হিন্দ।